लगर ची छो पी सजना दीची जे मिदुन जम टुबना बा श्यालंगा जुमन थु मौसु जे दीची छवा न्यानोंग पी लजी सेंदो